0: jolly good mood today. What is the reason?
1: This is the effects of famous masala chai by Navigator's Cafe.
0: I know this place. They're also famous for delicious snacks like aloo patties, samosa, vada pav, spring rolls, mango lassi, and my favorite, samosa chaat and bhel.
2: Navigator's Cafe, located at northwest corner of Queen Street East and Airport Road in Brampton. They are conveniently open 24/7.
3: जे तुसी भी करना चाहुंदे हो अपना खुद दा रेडियो प्रोग्राम ता आज ही सानू कॉल करो 647-504-1557। कोई भी कार वैन ट्रक दा कम होवे ता याद रखो रॉयल ऑटो सेंटर रिलायबल अफोर्डेबल अते ऑनेस्ट सर्विस जिथे कि मैं भी गड्डियां नु लेके जाना रिपेयर दे लई रॉयल ऑटो सेंटर टेस्ला दे व्हीकल्स ते भी कम करदे आ कोई भी रिपेयर किसी भी मेक एंड मॉडल सेफ्टी सर्टिफिकेशन उबर लिफ्ट दी सेफ्टी करवानी है स्पेशलाइज करदे ने इलेक्ट्रिकल अते कंप्यूटराइज डायग्नोस्टिक कम च स्टील्स एंड मेलनी रॉयल ऑटो सेंटर एंड एमिशन टेस्टिंग 905-799-1478-905-799-1478-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1
4: 973 3537 905 673 3337.

सौ संताली माफ करना 4378700001 ते तुसी मैनूं कॉल कर लेनी, मेरे को 7-8 टिकट्स बचियां ने। सो इस वीकेंड भी थोड़ा मनोरंजन करांगे। फिर एक होर खुशखबरी तुहानूं देन जा रहे हैं बस कुछ ही समय दे विच।

0: Cherokee.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.
1: पंजाब दे अमीर विरसे दी पुक्कल चों यादां दी संतूरी सफरता हम सफर सांझा विरसा
2: गीत संगीत देश दुनिया दियां ताजा तरीन जानकारियां नाल लबरेज महकां दी सौगात वंडदा सांझा विरसा
1: सोमवार तो शुक्रवार 5:30 AM ते सवेरे 4 बजे तो 5 बजे तक
0: बिजनेस दे प्रचार ते प्रसार लई संपर्क करो
2: सांझा विरसा दी टीम नू 647-835-5294
3: वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह अमृत वेले दा जागना जे कोई जागे नित एक वधेंदी आरजू दूजा साहिबा वे चित दे महावाक अनुसार सारे ही नगर निवासियां नू बेनती कीती जांदी है भाई अमृत वेला हो गया 4 बज गए उठो इशनान पानी करो गुरु घर च हाजरियां लवाओ ते गुरु दे जस गाओ वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

0: सर्दी च हीट नहीं चलदी ते गर्मी च एसी।
1: ले आपा हुणे करदे आ संधू साहब नाल गल ते करदे आ मसले दा हल।
0: एसी फर्नेस गैस लाइन वाटर हीटर या ह्यूमिडिफायर सर्विस या इंस्टॉलेशन नव एयर कंफर्ट ते जतिंदर संधू नु कॉल लाओ ते लाइफ च कंफर्ट पाओ। कॉल
1: 647-706-6640-647-706-6640।
2: ओए ट्रक काला लिया जदों वेखो एदियां कमानियां इटलियां रहंदियां की करा।
3: मैं सुनया जी अपने पंजाबी भरावां जे अते गैरी ने खोल दित्ती है GTA विच ट्रकां दे स्प्रिंगां दी पहली शॉप PNJ स्प्रिंग व्हील अलाइनमेंट।
4: पहुंचो 5330 ब्रेडको बुलेवार्ड मिसीसागा मेन इंटरसेक्शन डिक्सी एंड मैथसन।
5: इत्थे पी लाइन लेजर मशीनां नाल अलाइनमेंट ते नवे स्टाइल दियां मशीनां नाल बैलेंसिंग कीती जांदी है। इन्ना ही नहीं 4 व्हीलर्स अते 18 व्हीलर्स दे टायर्स दा खास प्रबंध वी है। जे तुसी ट्रकां ते ट्रेलरां दी कमानियां दा तसल्ली बख्श काम करवाना चाहुंदे हो
3: कॉल करो जे एंड गैरी नू
5: 905-459-5533
3: 905-459-5533
5: PNJ स्प्रिंग व्हील अलाइनमेंट।

0: 9988 77 sofastudio.ca. थैंक यू जी।
1: टीम फोर एंटरटेनमेंट पेश कर देने पंजाबी विरसा 2026
2: सावन चढ़िया
1: टोरंटो शो संडे 9 अगस्त नो
2: दुनिया मेले जानती
1: थिएटर एट ग्रेट कैनेडियन टोरंटो।

0: पापा दे वीजे री सुपर वीजा इंश्योरेंस लेनी है ते पंटी बबली दा विजिटर वीजा भी लगवाना है। मेरा ते खर्चा ही बड़ा हो जाना है।
1: शमी पठल होरा ने तुहाडा खर्चा छोटिया इंस्टॉलमेंटा च बदल देना है।
2: वधिया बेनिफिट वाली इंश्योरेंस पॉलिसी वाजिब कीमत ते लेके दिंदे ने शमी पठल।
0: सुपर वीजा ते विजिटर इंश्योरेंस दी बेस्ट डील ले। याद रखो इंश्योरेंस एडवाइजर शमी पठल जी दा नाम
2: 416-917-7763 416-917-7763 Life Insurance, Visitor Insurance, Super Visa Insurance, Critical Illness, Disability Insurance, RESP, Travel Insurance, Convert Expensive Mortgage Insurance to Term Insurance.

0: समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री जिथे पाजी दिया सारिया आइटमां $4.75 पर पाउंड तो शुरू ने। बेसन, पिस्ता, रसगुल्ले और जस्ट $5 पर पाउंड। तुहाडे इन्ने सालां दे भरोसे अते विश्वास कारण असी लेके आए हैं कस्टमर्स एप्रिसिएशन सेल 2026। 100% कैनेडियन मेड टॉप क्वालिटी स्वीट्स हुण 3 लोकेशंस तो सर्व करदे ने। 2 इन ब्रैम्पटन, 1850 एल्बन रोड, ईटोबीको। वधेरे जानकारी लई कॉल करो 416-213-1165 ते 416-213-1165।
1: ओहो, सर्दी च हीट नहीं चलदी ते गर्मी च एसी।
2: ले आपा हुणे करदे आ संधू साहब नाल गल ते करदे आ मसले दा हल।
1: एसी, फर्नेस, गैस लाइन, वाटर हीटर या ह्यूमिडिफायर सर्विस या इंस्टॉलेशन, नव एयर कंफर्ट ते जितेंद्र संधू नु कॉल लाओ ते लाइफ च कंफर्ट पाओ। कॉल 647-706-6640
3: 647-706-6640। दुनिया विच किते भी घूमन फिरन लई या सस्ते टूर पैकेजेस लई याद रखो कटारिया टूर्स एंड ट्रैवल 905-678-1200। कटारिया टूर्स एंड ट्रैवल दो लोकेशन तो अपनिया सेवावां प्रदान करते ने। 2883 डेरी रोड ईस्ट मिसिसागा, सेकंड लोकेशन 4550 एबनेजर रोड ब्रैम्पटन। हर तरह के टेस्टी इंडियन फूड अते स्वीट्स ले याद रखो द्वापा स्वीट एंड रेस्टोरेंट।
4: 4 लोकेशंस तो तानू सर्व कर देने। 100% प्योर वेजिटेरियन ते फ्रेश फूड एंड स्वीट्स ले द्वापा स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट। करो डाइन इन, टेक आउट, टिफिन सर्विस दे नाल नाल केटरिंग अक्रॉस GTA। बल्क ऑर्डर ली साडी फैक्ट्री विजिट करो।
3: ਓ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਰ ਨਾ ਲਗਾਓ, ਗ੍ਰੀਨ ਵੈਲੀ ਸੁਪਰ ਮਾਰਕੀਟ ਆਓ। ਸੁਪਰ ਡੀਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰੋਸਰੀ ਤੇ ਡਾਲਰ ਬਚਾਓ। ਵੈਜੀਟੇਬਲ, ਫਰੈਸ਼ ਫਰੂਟ, ਮੀਟ, ਚਿਲਡ ਬੀਅਰ, ਡਾਈਨ ਇਨ ਤੇ ਟੇਕ ਆਊਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਹਫਤੇ ਦੇ 7 ਦਿਨ ਖੁੱਲਦਾ ਹੈ। ਤੰਦੂਰੀ ਬਾਈਟ ਚਾਟ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਵਧੀਆ ਸਵਾਦਲੇ ਫੂਡ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਉਠਾਓ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਆਰਡਰ ਲਈ ਕਾਲ ਕਮਾਓ 905-913-1166, 905-913-1666 ਜਾਂ ਪਹੁੰਚੋ 11665 ਮੈਕਵੀਨ ਡਰਾਈਵ, ਮੇਫੀਲਡ ਦੇ ਨੁੱਕਰ ਤੇ।

0: अभी विदाउट डूइंग अ रीफाइनेंसिंग अगर आप नहीं करना चाहते, पेनल्टी ज्यादा है, तो थर्ड ऑप्शन है कि आप सेकेंड मॉर्गेज ले सकते हैं या होम एक्विटी लाइन ऑफ क्रेडिट ले सकते हैं, जिनके थ्रू आपको 1 लाख 2 लाख 3 लाख डॉलर जो भी है बेस्ड ऑन दी एग्जिस्टिंग हाउस जो आपके घर में है, उसके हिसाब से आपको 80% फाइनेंसिंग तक आपको फंड्स मिल सकते हैं। तो वो फंड्स के लिए आपकी क्लोजिंग, मतलब आपकी हो पाएगी, हो जाएगी आपकी क्लोजिंग। तो ये ऑप्शन है तीन, तो उसके लिए कौन से ऑप्शन आपके लिए बेस्ट है, कौन सा फिजिबल है, कहाँ पैसे बचेंगे आपके, उसके लिए डेफिनेटली नीड टू हैव अ मीटिंग ओवर द फोन और इन पर्सन, तो वो जरूरी है। तो उसके लिए अगर आपकी क्लोजिंग 1 महीने में आ रही है, आप देखिए अगर लास्ट मिनट क्लोजिंग है, अगर बैंक ने डिक्लाइन कर दी है, तो वो भी सोल्यूशन है, और आपके पास अगर कुछ समय है तो उसका भी सोल्यूशन है, डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन क्या है। तो फॉर अ राइट इन्फॉर्मेशन, राइट नॉलेज के लिए, यस डेफिनेटली यू कैन कॉल मी, आई विल सी हाउ आई कैन हेल्प यू। दिस इज मुकेश चौहान, मॉर्गेज ब्रोकर फ्रॉम मॉर्गेज डिलिजन। नंबर टू कॉल मी 647-512-7000, 647-512-7000।
1: बिल्कुल बिल्कुल मुकेश जी, और साथ में ही हमारे कुछ लिसनर है, मैं उन्हें बोल दूं कि प्लीज थोड़ा जा तुसी जड़ा जी वेट कर लो, लाइन्स जड़ियां जी आप बहुत जल्दी लवांगे। नाल के साथ में मुकेश जी, मेरा एक और सवाल आपसे ये है कि व्हाट इफ समवन इज पेइंग प्राइवेट फाइनेंसिंग के साथ, बहुत सारा जो है उन्हें करंटली हाई इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, बट उनकी इनकम जो है लो है और उनकी जो है क्रेडिट भी बहुत जो है अच्छी नहीं है, एंड आप कैसे उन्हें सजेस्ट कर सकते हैं और हाउ यू कैन हेल्प देम टू गो टू द ट्रेडिशनल बैंक और वो बैंक के थ्रू जो है फाइनेंसिंग करा सकते हैं? सो आप उसके लिए थोड़ी सी जो है टिप्स एंड ट्रिक्स जरूर बताना जी।
0: लेकिन कभी भी बैड क्रेडिट होता है, या किरण जी आसान लफ्जों में बोलूं, किसी का कंज्यूमर प्रपोजल है बैंकरप्सी, राइट, तो उनका माइंड में होता है, उनको ये लगता है कि हमें प्राइवेट मॉर्गेज ही मिलेगी, हमारे पास और कोई चॉइस नहीं है, है ना। तो अगर मैं आपको ये बोलूं कि ये रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, ऐसा नहीं है, इट्स नॉट नेसेसरी कि हर इंडिविजुअल की प्राइवेट मॉर्गेज ही लेनी पड़े। आपके पास अगर लो क्रेडिट है, बैड क्रेडिट है, इनकम इनकंसिस्टेंट है, या दो की इनकम थी अब एक ही है घर में इनकम, या बिजनेस स्लो डाउन हो गया आपका, ठीक है, सिचुएशन डिपेंड करती है, लोन टू वैल्यू क्या है, घर की मॉर्गेज जो है 5 लाख है मगर घर की वैल्यू 1 मिलियन है, तो उससे भी फर्क पड़ता है। तो डिपेंड करता है, यू नो नंबर आंसर टू योर क्वेश्चन, आपको प्राइवेट मॉर्गेज लेने की जरूरत नहीं है, स्पेशली आपका बैड क्रेडिट है, लो क्रेडिट है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, तो इस चीजें में आपको जाने की जरूरत नहीं है। आपको मॉर्गेज रीफाइनेंसिंग के थ्रू आपकी जो भी सिचुएशन है, देखिए बैड क्रेडिट क्यों होता है, बिकॉज ऑफ दी हाई क्रेडिट, आपने पेमेंट मिस करी है, आपने ओवर यूटिलाइजेशन करी है, राइट, तो उस सबसे उसको इम्प्रूव कैसे करेंगे, उसको मॉर्गेज रीफाइनेंसिंग के थ्रू अपने मल्टीपल डेट से उनको हम पे कर सकते हैं जितने भी ज्यादा है। और सेकेंड ऑप्शन ये है कि आप उनको जब पे करेंगे आप उनको, तो यू नॉट नेसेसरी टू कैंसल दोज ऑल द क्रेडिट, तो वो भी साथ साथ रहेंगे, आपके डेट्स भी पे हो जाएंगे, क्रेडिट भी इम्प्रूव होगा, आपको घर में एक्विटी साथ में चाहिए बेसमेंट बनाने के लिए या रेनोवेशन के लिए, या अभी आपको एक नई प्रॉपर्टी बाई करनी है तो वो भी पॉसिबल है। बट आप जो है इस डोंट थिंक दैट आपका क्रेडिट जो है खराब हो गया है, आपने कंज्यूमर प्रपोजल किया तो आपको प्राइवेट मॉर्गेज लेनी पड़ेगी, नो। सो गिव मी अ कॉल, आई विल बी एबल टू हेल्प यू आउट टू डू योर मॉर्गेज विद द ट्रेडिशनल बैंकिंग, राइट, हमारे पास बी लैंडर है, ऑल्टरनेटिव लैंडर्स भी है, मोनोलाइन लैंडर्स भी है। तो बेस्ट थिंग ये है कि आपकी सेविंग होनी चाहिए 2 से 3 हजार डॉलर की महीने की, है ना। आपको सिचुएशन बेटर करनी है, तो बेटर करने के लिए आपको बेस्ट लोगों को अप्रोच करना है, किसी भी प्रोफेशनल को अप्रोच करें, एनी वन लाइक मी जिसको आप लगता है कि ये राइट इन्फॉर्मेशन है, राइट नॉलेज राइट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। वंस अगेन दिस इज मुकेश चौहान, मॉर्गेज ब्रोकर, my number to call me 647-512-7000, 647-512-7000। Kiran ji, it's okay ji, thank you so much sir,
2: thank you sir. सो ये संजीव मुकेश चौहान जी, और किसी भी मॉर्गेज की किसी भी चीज की गलबात करनी इन्होंने कर सकते हो। तो अज का प्रोग्राम ढिलों वीडियो के सहयोग में पेश कर रहे हैं, पीजा डिपो का भी सहयोग है, अंजम क्रेशी, जे रब ना करे तो एक्सीडेंट हो जाता है, तुम इन्होंने सलाह करो 416-570-0157 के उत्ते। किया 427 ने भी अज्ञ प्रोग्राम साथ दिता है, बहुत व्डे जोड़ा है किया 427 ने अपना शोरूम बनाया, इस वीकेंड के उत्ते एक वीड्डी सेल लगन जा रही है किया की, और कोई भी ਵੀ ਕੀਆ ਦੀ ਗੱਡੀ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਲੈਣੀ ਜਾਂ ਬਾਏ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉੱਥੋਂ ਲਾਈਵ ਔਨ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਚੱਲੇਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਟਿੱਕਾ ਜੰਕਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਸਪੌਂਸਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਚ ਪਹੁੰਚੇ

0: ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਅਮੇਜ਼ ਡਾਕਟਰ ਕਲੀਨਿੰਗ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਪੌਂਸਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਮੇਜ਼ ਡਾਕਟਰ ਕਲੀਨਿੰਗ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲਓ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਕਲੀਨ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦੇ ਕੇ ਦੇਖਿਓ। ਬਈ ਮੇਨ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਤਾਂ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਵਾ, ਸਰਵਿਸ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਵਾਜਬ ਆ। ਸੋ ਬੈਂਟ ਇਕੱਲਾ ਇਕੱਲਾ ਕਲੀਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਐਨ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਗੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਡਸਟ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਅਸੀਂ ਹਵਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਐਲਰਜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਘਰ ਦੀ ਹਵਾ ਹੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬਾਹਰਲੀ ਤਾਂ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ। ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਆਹ ਨਹੀਂ। ਯਾਰ ਘਰੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਦੀ ਘਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਘਰੋਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਅਮੇਜ਼ ਡਾਕਟਰ ਕਲੀਨਿੰਗ। ਬਹੁਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ $500 ਲੈਣਾ, ਨਾ ਨਾ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕਟਰ ਕਲੀਨਿੰਗ ਘਰ ਦੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਆ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਆ, ਰੈਜੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। 647-249-6667 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ, 647-249-6667, 647-249-6667, 647-249-6667, ਅਮੇਜ਼ ਡਾਕਟਰ ਕਲੀਨਿੰਗ। ਨਾਗਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ। ਨਾਗਪਾਲ ਸਾਹਿਬ
1: ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਜੀ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਲਾਈਕ ਫਿਰ $50,000 to $170,000 ਤੱਕ ਕੇ ਲੋਨ ਕੇ ਲਈ ਆਪ ਲੋਕ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪ ਪੀ ਆਰ ਹੈ, ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਡ ਪਰਸਨ ਹੈ, ਨੋ ਏਜ ਲਿਮਿਟ, ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੇ ਲਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਪਕੋ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੋ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਚੈੱਕ, ਨੋ ਕੋਲੈਟਰਲ, ਨੋ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ। ਐਂਡ ਇਸ ਮੇ ਲਾਈਕ 0% ਪੇ ਹੋਤਾ ਹੈ ਲੋਨ ਫੋਰ ਦ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ 1-2 ਸਾਲ ਤੱਕ 0% ਪੇ। उसके बाद जब आप पे करना स्टार्ट करते हैं, अगर आपका 2 साल का कोर्स है तो 2.5 साल बाद जब आप पे करना स्टार्ट करते हैं तब भी ब्याज 2.5% है पूरे साल का, महीने का नहीं पूरे साल का। और 15 साल में आसान किस्तों में आप इसको पे कर सकते हैं। ओपन लोन है, जल्दी पे कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं। ऐसा भी नहीं, अगर आपने जॉब नहीं लगी आप कहां से पे करेंगे, आप डेफर करा सकते हैं। स्किल डेवलप करें, गवर्नमेंट फंडिंग दे रही है, मिस ना करें इस अपॉर्चुनिटी को। आपके खाते में डायरेक्ट फंडिंग आती है, हमारे खाते में नहीं आती। हमारी चीज काम होने के बाद अगर आपने आज ज्वाइन करा, पहली किस्त आपके खाते में 30-90 days में आ जाती है, 60% ऑफ द अमाउंट।
0: अच्छा,
1: अगर आपका साल का लाख बन रहा है तो 60,000 आपके अकाउंट में विद इन 60 days आ जाएगा। सेकेंड जो $40,000 है, पहली किस्त गिरी है 60 दिन के अंदर, उसके 5 महीने के बाद आपके खाते में डायरेक्ट सेकंड किस्त आ जाती है।
0: सो तुसीं तुहाडी फीस जदों पहली किस्त आ गई ओह तो बाद देनी है।
1: हाँ जी, हाँ जी, उसके
0: तुहाडी फीस देनी है। दो सालां दे विच एक बार ही देनी है, मतलब $200 जां हर महीने जां हर बार देनी है?
1: हमारी वन टाइम फीस है। अगर कोई 1 year का कोर्स करे तो 199 है, 2 साल का कोर्स करे तो फाइल फिर से बनती है, हमारा फिर से टाइम लगता है उसके ऊपर। तो फिर 199 फिर से लगता है नेक्स्ट ईयर के लिए। दैट्स इट, कोई हिडन फीस, कोई परसेंटेज नहीं है, कोई चलाकी नहीं है इसके अंदर।
0: अच्छा, कोई और हिडन कॉस्ट इधर है नहीं की?
1: बिल्कुल जी, 8 साल से साफ तरीके से काम कर रहे हैं। और इसमें बच्चे अगर आपके छोटे हैं, 11 साल से नीचे हैं, तो आपको छोटा सा ग्रांट भी आता है, जैसे कॉलेज की फीस कवर जाती है, जेब से कुछ नहीं जाता, उल्टा आपके हाथ में 1-2 लाख की फंडिंग आ जाती है। तो फैमिली साइज पे डिपेंड करता है, बच्चे ज्यादा हैं ज्यादा फंडिंग आती है, बच्चे अगर 11 साल से कम है उम्र तो और ज्यादा आपको फायदा है इससे।
0: ओके, सो इहदी जिहड़ी मेन वड्डी गल इह है कि जिहड़ी कॉलेज की फीस हुंदी है फिर उह इह लोन दे विचों दित्ती जांदी है जी?
1: बिल्कुल जी, यहाँ पे ऐसा है। लेकिन अगर आपके बच्चे 11 साल से छोटे, मान के चले फैमिली ऑफ 5 है, तीनों बच्चे 11 साल से छोटे, तो कॉलेज की फीस कवर होगी ग्रांट से। और आपके पास अपना 1.5-2 लाख आ गया 2 साल के कोर्स अगर आप करते हैं, राइट? तो बच्चे छोटे होने का बड़ा एडवांटेज है।
0: जे तुहानू कॉल करके पता करना होवे तां तुसीं फोन ते ही दस सकदे हो कि किन्नी ग्राम जिहड़ा लोन किन्ना मिल सकदा ते किन्ने दिनां च मिल सकदा जे तुहानू कॉल कीती जावे?
1: बिल्कुल जी, बिल्कुल जी, फ्री असेसमेंट है। आप हमें कॉल करें, आपको लाइक शाम को हम 6-7 बजे एस्टीमेट देना शुरू करते हैं। आप हमें अभी डिटेल लिखवा दें अपनी छोटी सी, बस आपका NOA कितना है, बच्चे कितने, बच्चों की एज कितनी है, दैट्स इट। और इनकम मैटर नहीं करती, चाहे सेल्फ एम्प्लॉयड है, जॉब करते हैं, वो मैटर अब नहीं करता। सेल्फ एम्प्लॉयड है, उबर ड्राइवर, अनएम्प्लॉयड, कुछ भी आप हैं, PR सिटीजन, प्रोटेक्टेड पर्सन है, कहीं भी उनटारी में रहते हैं। स्किल डेवलप करें, गवर्नमेंट से फंडिंग हासिल करें, बैंक से नहीं, गवर्नमेंट से, आसान शर्तों पे, आसान किस्तों में।
0: बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। नंबर एक बार साझा कर दो।
1: नंबर जी 437-264-3175, 437-264-3175। नंबर अगेन नोट करो, कॉल करो, 437-264-3175,
0: 437-264-3175। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू।

0: 416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551- कैनेडा दे स्टडी वीजा, एक्सप्रेस एंट्री, कैनेडियन एक्सप्रेस एंट्री, स्पाउसल फाइल, पेरेंट्स पीआर, सुपर वीजा, नैनी, वर्क परमिट, फार्मर, इन्वेस्टर या सेल्फ एम्प्लॉयड दी फाइल, गल की इमिग्रेशन दी हर प्रॉब्लम दा सॉल्यूशन लैन लई कम्युनिटी दे जाने पहचाने अते तजुर्बेकार इमिग्रेशन कंसल्टेंट गैरी विर्क नु मिलो।
1: कोई केस रिफ्यूज हो गया या अपील ते चला गया, होवे इमिग्रेशन दा कोई भी मसला, हमेशा याद रखो इको ही ना अते इको ही था CIC इमिग्रेशन। हुणे ही कॉल करो 416-456-6161।
2: कनेडा विच रहंदे हुए हर परिवार को लाइफ इंश्योरेंस होनी बहुत जरूरी है अपने परिवार दी फाइनेंशियल सिक्योरिटी ते फ्यूचर प्लानिंग लई।
3: इसे लई मैं अपनी ते वाइफ दी इंश्योरेंस पॉलिसी प्राइम इंश्योरेंस ते सिमराज सिद्धू तो ही करवाई है।
4: जेकर तुसी भी किसी तरह दी लाइफ इंश्योरेंस, मॉर्गेज इंश्योरेंस, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस बारे सोच रहे हो ता सब तो वध कवरेज ते सही पॉलिसी तुहानू सिमराज सिंह सिद्धू ही दवा सकते ने। पेरेंट्स लई सुपर वीजा इंश्योरेंस या विजिटर वीजा इंश्योरेंस दी बेस्ट कोट लई हुणे कॉल करो 416-456-3381 ते 416-457-3381 ते।
2: नाले जेकर तुसी कोई इंश्योरेंस पॉलिसी पहले ही लई हुई है तो तुसी बहुत ही ज्यादा पैसे पे कर रहे हो। बिल्कुल फ्री विच पॉलिसी रिव्यू करवा के तुहाडे पैसे बचाउंगे। हुने ही सिमराज सिंह सिद्धू नु कॉल करो 416-457-3381 416-457-3381।
5: हेलो AM 530 तो तुसी सुन रहे हो देश प्रदेश प्राइम टाइम रेडियो।
6: टुडे विच लाइव गलबात करन लई हुणे कॉल करो 905-564-6444।
5: 905-564-6444।
6: सुनते रहो देश प्रदेश प्राइम टाइम रेडियो, चलो AM 530 तो।
7: रोकी तू अपनी इंश्योरेंस किस तो करवांदा यार?
8: ओए कल्ला मैं नहीं, अपनी कम्युनिटी दा हर बंदा इंश्योरेंस एक्सपर्ट मोना मेंगी जी कोल करवांदे ने।
7: वाह यार, नंबर ता दई मोना जी दा।
8: हां जी, तुसी भी नोट करो, इंश्योरेंस कोई भी होवे, इंश्योरेंस फॉर यू दी मोना मेंगी जी। जेडे लाइफ इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस, सुपर वीजा इंश्योरेंस अते हर तरह दी इंश्योरेंस दे लई भरोसेमंद नाम है। हुणे कॉल करो 416-509-1509 ते।
9: याद रखो मोना मेंगी फ्रॉम इंश्योरेंस फॉर यू
8: 416-509-1509
9: और विजिट insuranceforyou.ca।
6: दोस्तों देश प्रदेश प्राइम टाइम रेडियो नो या चलो AM 530 ते 24/7 जिन्ने भी प्रोग्राम आउंदे ने उहनां नूं सुनण वास्ते जां देश प्रदेश लाइव देखने वास्ते लॉग इन करो साड़ी वेबसाइट नू www.deshpardeshradio.com या www.deshpardeshtv.com। लाइव सुनना चाहते लाइव पे क्लिक कर लो, जो वॉच करना चाहते हैं तो उसे क्लिक करो, या फिर अपने IPTV बॉक्स के उत्ते पंजाबी सेक्शन क्लिक करो, उसके उत्ते जाके देश प्रदेश टीवी नू क्लिक करो, उत्ते तुसी सुन भी सकते हो, वेख भी सकते हो 24/7।
10: लखां दिलां दी धड़कन द सुपरस्टार एमी वेल।
11: मैं कितने बैठे आ करूं, आओ जट खब्बी सीट पे बंदूक रख दे।
10: Blue Sound Live and Cellular Point present Amiwell Live Inter